जन्म पाए कछु पलो ना कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछु ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चुग चुगै प्रभ पावै सरवर में हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहे समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिवला

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिलै मिलिया प्रवान नात स्मरण न आवन जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिलै मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घड़ पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पे आवै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आजुगा सहज मन तीर पल पंकज मैं कोटो धारे कर कृपा गुरमेल प्यारे

कोई ऐसोरे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावे पड़े रे सगल भेद नह चूके मन भेद एक खेना धीर है मेरे करके पंचा।

हमरे मन तनु राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खन में पई पराई, दुर्भाषा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बार अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बज्र कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा, रहाओ।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पदत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे, दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो करमरी रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी तांचे रे स्वार्थी, पंखी राय गरड़ तांचे बादवा, कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी, कर्म कर कपाल मफीट सरी, अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्पतार शिखर सुनागर नदी चे नाथं, कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गढ़, ओपाड़ी ले रावण बाण, सल बिसल आण तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्ब लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहण, ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को रहाओ, ऊतम दियारा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती, रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै, मदन मूर्त पैतार गोबिंद सैन पणै, पज परमानंद पीपा, कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती, काया बहु खंड खोजते नवनिद पाई, ना कश आए बो ना कश जाए बो, राम की दुहाई रहाओ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लखावै तन्ना, गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ, दाल सीधा मांगो कीओ, हमरा खुशी करै नित जीओ, परियां शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका, गऊ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी, जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा ही रतन नाम हर बसिया, गुरहा तरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे।

था हम अंधले ज्ञान ही न ज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजे जन नानक चले मिलम था। जय श्री महला चौथा हीरा लाला मोल कह पारी बिन गाहक मी का खा रतन गाहक।